0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

خدا کا محمد ہمارا محمد خدا

खुदा का मोहम्मद हमारा मोहम्मद खुदा।

0: और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ।
1: इन्ना रब्बक यब्सुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा।
0: बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है, वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है।
1: वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा।
0: और अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से कत्ल न करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिज्क देते हैं, कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है।
1: वला तक्रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला।
0: और जिना के भी पास न जाना कि वो बेहयाई और बुरी राह है।
1: वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا।
0: और जिस जानदार का मारना खुदा ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी बफतवाए शरीयत, और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के कसास में ज्यादती न करे कि वो मंसूर व फतह याब है।
1: वला तक्रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दहु व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला।
0: और यतीम के माल के पास भी न फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए, और अहद को पूरा करो के अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी।
1: वो अवफुल

0: ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है।
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते।

0: और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ।
1: इल्ला रहमतन मिन रब्बिका इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा।
0: मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है।

0: बाज लोग अटकल पिच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना।
1: वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलु ज़ालिका गदा,
0: और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा।

ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं, उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है।

और उसके मेहों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता।

0: उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया।
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
0: موسى نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے
1: فوجد

वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत यानी नबुवत या नेमत विलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, यू ट्यून्ड इनटू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, जहां हमारा शो चल रहा है यूसीपी फैकल्टी आर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लिश डिपार्टमेंट और इसकी एक्साइटिंग ऑफरिंग्स। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी मिस अरीबा के साथ, जो हमें बता रही थी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, करियर के हवाले से हमें इंग्लिश डिपार्टमेंट किस तरह से हेल्प करता है। तो मिस अरीबा, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
2: सो आई वाज रेफरिंग टू द इंडस्ट्री एंड द डाइवर्सिटी दैट वी सी इन द इंडस्ट्री टुडे एंड हाउ इट्स यू नो चेंजिंग डे बाय डे। So, going back to your question, what you were asking earlier, Nayab, about CSS and many other competitive exams that, you know, students like to compete in terms of, you know, English literature, linguistics and language, I think it could be very beneficial for the students because not just that, it improves their, you know, expression, because obviously language is, you know, an important tool for the competitive exams. But at the same time, the way they critically view the questions is also very important. And I think this comes with their understanding of literature and the world around them.
1: Yes,
2: literature definitely, you know, brings a world view in a different perspective. So not just that they understand, you know, the mini narratives, but a nuanced understanding of the current politics of the world is also, you know, there with literature. So agar aap ek perspective se dekhe, so literature is giving them an interdisciplinary understanding of, you know, what's happening around. And that is very important for CSS because not just writing, aapne world view ko bhi dekhna hai. आपने करंट टाइम्स को देखना है, आपने उस टाइम की मूवमेंट्स को देखना है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इफ यू स्टडी देम इन डिटेल एंड आई थिंक यू नो आवर डिपार्टमेंट करिकुलम इज प्रोवाइडिंग यू विद दैट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट कैन हेल्प यू क्लियर सीएसएस।
1: यस एग्जैक्टली, और जैसे डॉक्टर ताहिर ने भी हमें कुछ वक्त पहले बताया कि इंग्लिश डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ, तो वो तो लग रहा है बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्टिंग होगा।

0: variety of courses that we are offering is all, they're also very interdisciplinary, because abhi recently we, you know, last year, I think if I'm not wrong, we offered a course for digital storytelling that was in collaboration with CS department. We are also planning to, you know, have some courses that are linked with the Pol Science department and many others, so that, you know, a variety of courses, you know, could be displayed.
1: Let me add, Ms. Naya, here we are regularly updating our courses for BS programs, MS and then PhD. Recently, we got approval of 3 our courses as well. Ms. Ariba can mention the name and title of the course that we have introduced in BS English of related to literature.
0: Exactly, yes. That is Blue, that one? Yeah, that's Blue Humanities. It's an interdisciplinary course that deals with, you know, the water crisis.
2: I really wanted to know interdisciplinary courses. Thank you, Ms. Ariba. Ye bahut interesting.
0: Exactly. And then we have eco-linguistics as well. Yes.
1: And then we have also included clinical linguistics.
0: Yes.
1: So these courses we have included to provide interdisciplinary research to our students.
2: And seems to be very modern. Yes, trending exactly. Or time ke liye haas se bahut update course lag rahe hain. Thank you sir, thank you, bahut interesting hai. Sir, ek aur sawal jo mere zehen mein bhi aa raha tha ki how do students engage this practical experience in regard to language skills development or research? To research se like main janna chahungi ki kya opportunities hamari English department offer kar raha hai and how do we cater research here?
3: इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम रिसर्च स्किल्स को स्टूडेंट्स में इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं. अभी जैसे डॉक्टर ताहिर ने बात की, मिस अरीबा ने बात की कि वी ऑफर अ ह्यूज वैरायटी, अ वाइड एरे ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, और हम वो स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं. अब ज़ाहिर है जब आप स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव स्किल्स पर जाते हैं तो जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है तो उसमें एग्ज़ाम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे भी हों जब तक उनकी लैंग्वेज स्किल्स वेल डेवलप नहीं हैं,
2: बिल्कुल,
3: तो वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आती. तो यहाँ पे लाइक इस हवाले से डिपार्टमेंट के अंदर हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से, लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से तो वी मेक एफर्ट्स फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी. लाइक आई बीइंग द डायरेक्टर मेक श्योर के आवर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स इन देयर क्लासेस, और उसके लिए हमने करिकुलम के अंदर चेंजेस लाई, उसके अंदर हमने टीचिंग स्टाइल्स के अंदर लाई, यू नो नाउ, एंड दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ यूसीपी दैट ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन क्लासरूम ऑन डेली बेसिस इन ऑल, यानी अब हमने टीचिंग को एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट दे दी है और स्टूडेंट सेंटर्ड कर दिया इसे. अब आते हैं रिसर्च वाले जो बात है कि सबसे पहले तो हमारे अपने क्रेडेंशियल्स हैं, यानी हमारे यहाँ जो फैकल्टी है इट्स अ वेरी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी एट द फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंडली दे हैव एक्सट्रीमली क्रेडिबल रिसर्च क्रेडेंशियल्स. हमारी मेजॉरिटी जो प्रोफेसर हजरात हैं, हमारे जो लेक्चरर्स हजरात हैं, उनकी इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशंस हैं. और इसी तरह अब ये तो एक एस्पेक्ट है, ये तो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, लेकिन वो जो स्किल्स डेवलप की हैं ओवर द ईयर वो हम स्टूडेंट्स में बहुत कॉन्शियसली इंस्टिल करते हैं, और नतीजतन हमारे बहुत सारे एमएस के और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं इवन बिफोर हैविंग कंप्लीटेड देयर डिग्रीज दे हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स.
2: Amazing. Okay,
1: let me add here, Dr. Kazi, thank you for adding all this. Our students, this is my claim, ये मेरा दावा है कि हमारे students जो अभी MS कर भी नहीं रहे होते, जैसे Dr. Kazi ने बताया, वो impact factor journals में publish कर रहे हैं. BS के students जिनका अभी BS complete नहीं हुआ वो impact factor journals में publish कर रहे हैं. And it was previously a myth that people from literature and linguistics, they cannot publish in impact factor journals. Now we have busted that myth, and now we are continuously publishing in impact factor journals, and then our young lecturers, they are publishing in impact factor journals. We are expecting from our PhDs that they should publish in impact factor journals. They all are publishing, but young lecturers, young students, they all are publishing in impact factor journals. So it is my claim that my department is publishing the best research in Lahore and even in Pakistan in top quality journals.
3: True that.
2: बेहतरीन सर, मेरे जहन में अभी भी कुछ सवाल हैं रिसर्च से रिलेटेड. विल एक्सप्लोर देम ऑफ कोर्स राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड विद अस. इस इज FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 92.6 जहां हमारा इस वक्त शो चल रहा है UCP फैकल्टी आर। यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमें डॉक्टर ताहिर बता रहे थे रिसर्च के बारे में। सर, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल था जो शायद एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट सभी के माइंड में आ रहा हो कि क्या BS का बच्चा भी रिसर्च में इन्वॉल्व होता है या वो भी कोई थीसिस लिखता है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल होता होगा ना, फर्स्ट टाइम रिसर्च के साथ फेमिलियर होना, इतनी टेक्निकलिटीज में आना।
2: जी मिस ने, अब मैं आपके सुनने वालों को स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि HEC का जो करिकुलम है उसमें मेंशन किया हुआ है कि टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना है रिसर्च राइटिंग के हवाले से फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। सो वी ग्रेजुअली प्रिपेयर देम बाय गिविंग देम सम असाइनमेंट्स, 500 वर्ड्स इन द बिगिनिंग इन द फर्स्ट ईयर, 1000 वर्ड्स इन द सेकंड ईयर, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज, एंड देन 3000 वर्ड्स देन इन द थर्ड ईयर, and in the fourth year we move to 5000 to 8000 words in the seventh and
1: eighth, a mini thesis
2: exactly,
1: time yeah.
2: in the well, seventh and eighth semester we offer them a course as well that is related to research, and then our teachers, they work very hard for our students grooming, and then they prepare them to write research papers. As I mentioned previously, my students, They are publishing, even 7th and 8th semester students, they are publishing in impact factor journals, and we are grooming them and we are making them ready for the market.
1: Isi baat se mere mind mein ye question aaya tha ki ye to bahut mushkil task hota hoga, of course teachers ke liye bhi bahut mehnat hogi, to kafi interesting lag raha hai ki hamare bacche bhi kar rahe hain, BS ke bacche bhi.
3: Main Dr. Tahir ki add karta chalo unki baat mein ki jaise currently in the current semester I was teaching 7th semester student रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स था, तो लाइक 45 स्टूडेंट्स थे उसमें, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई स्टार्टेड गिविंग देम ट्रेनिंग इन रिसर्च, और उनका जो मिनिमल टास्क रखा ये था कि देल बी राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल, और उसमें जो एटलीस्ट फर्स्ट 4 सेक्शंस, जिसमें लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन लीडिंग टू लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ऑप्शनल हमने रखा था कि उसमें एनालिसिस पे भी, एंड इट्स नॉट ओनली इन वन सेक्शन, लाइक वी हैव सेवरल सेक्शंस एट द मोमेंट। तीनों सेक्शंस में स्टूडेंट्स ने, ऑल ऑफ देम, एटलीस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर्स उन्होंने सबमिट किए हैं अपने रिसर्च आर्टिकल के, इंट्रो, लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो दैट्स हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन रिसर्च।
4: I would like to add here, Nayab, that research does not come just from teaching. Jaise Sir Tahir ne bataya and Dr. Kazi ne, there needs to be an environment for research, and I think UCB is providing that environment, particularly in our department. If I would enlighten the audience here, that we have research groups that are, I think, 4 research groups, yeah, and that are working in various fields. Some of them are working in linguistics purely, some in literature, and some are working on interdisciplinary and multidisciplinary researches. And these groups not just enable the students to conduct research in collaboration with the teachers, but they are also organizing research discussions and talks that are happening almost every week, if I'm not wrong, Dr. Tahir. And the purpose of this is that they can interact with the researchers abroad, directly through virtual forums, and they can ask questions. And some of the researchers that we have brought to UCP in our events that we have conducted are researches that were published in 2023 or 2024, and these are very recent researches. So we really want that a liaison is to be created between the international researchers and the researchers at UCP. So overall, what I'm trying to say over here is that we are creating that atmosphere of research, which is very important in modern times.
1: Well, that's fascinating. I mean, from academia to media, publishing to corporate sectors, or opportunities to bahut endless ho gayi hain yahan pe. Sir, ek aur sawal tha, kuch mere jaise students hote hain jinki English thodi si weak hoti hai, tools ke bare mein aap kuch guide karna chahenge? Jaise ChatGPT aajkal bahut in hai, to kya mere jaise kamzor angrezi wale log ChatGPT use karke research kar sakte hain?
2: Yes, but again, उसके लिए मैं आपके स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि prompts engineering is very important. वो जितना अच्छा prompt देंगे ChatGPT को, उतना ही अच्छा वो response आएगा. तो yes, हमारे तमाम courses में जो introductory lectures हैं हमारे, हमने course outlines में include किया हुआ है कि हमने अपने students को जितने AI tools हैं उनसे introduce करवाना है. हम अपने students को beginning में ही expose कर देते हैं AI tools से and वो फिर उसको सीखना शुरू कर देते हैं और teachers को गाइड करते हैं कि आप इन टूल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर राइटिंग, देयर स्पीकिंग एंड देयर रीडिंग एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट स्किल्स.
3: और इसमें मैं एक ऐड करूं कि हम एक कोर्स भी एमएस लेवल पे एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं
2: exactly.
3: जिसमें AI की इंटीग्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के साथ.
1: सो क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि एक जमाना होता था जब इस तरह के टूल्स के बारे में बात की जाती थी तो उनको टोटल निगेट कर दिया जाता था. लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ आप लोग इसको निगेट नहीं कर रहे बल्कि इसका राइट यूज सिखा रहे हैं.
2: वी एक्चुअली एम्ब्रेस इट इन द वेरी बिगिनिंग और हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि नहीं हमें ये अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए. नहीं, हमने उनको इनकरेज किया कि वो इसको यूटिलाइज करें और हम उनको सिखाते हैं कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स भी कैसे दे सकते हैं ताकि आप रेलिवेंट जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं उससे ChatGPT से तो आप उसे उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं.
3: हाँ, और इसमें एक और चीज है कि यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दैट कि हमने उससे डेटा जनरेट नहीं करना. Or like that is not acceptable. That falls in the category of plagiarism. Data generate नहीं करना, इसके अलावा writing भी generate नहीं करनी. तो ये जैसे डॉक्टर ताहिर ने अभी कहा कि you know developing the ability to give right kind of prompts. ये सारे सवाल research के हवाले से ethical consideration में fall करते हैं. जैसे कि ethical consideration की तो आप even when you are constructing a research question, so you have to consider ethics, so on and so forth. Isi hawale se ye bhi usi mein hai ki aap, you cannot generate data, you should not do analysis through those taaki aapka jo human mind ki jo application hai wo ho. Haan, yes, usko tools ko effectively use karne ka kya tarika hai.
1: Well, right, sir. For the students who are interested in research and future studies, department offers, of course, remarkable resources and guidance. Well, of course, we will explore that right after this short break. Stay tuned with us. This is FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 जहां हमारा शो चल रहा है यूसीपी फैकल्टी और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रिसर्च पे। तो जी सर, आप बताना चाह रहे थे
2: जी
1: कुछ?
2: मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल सिंपोजियम्स एंड देन सेमिनार्स एंड वेबिनार्स। इसमें हम जब इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर आज़ादी देते हैं कि वो इनको ऑर्गेनाइज करें ताकि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें, और हम उनको ये भी चांस देते हैं कि वो जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे यूनिवर्सिटीज में आते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज से जो टीचर्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स आते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, उनके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो सके और अपने वो इंटरनेशनल लिंक्स डेवलप कर सकें, और इससे हम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जो स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, ग्रूमिंग है, उसको वो इन्हेंस कर सकें, और हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि ताकि वो मार्केट में जाएं तो सक्सेसफुल ज़िंदगी अपनी गुजार सकें और जितने ज़्यादा चांसेस अवेलेबल हैं मार्केट में उनको अक्वायर कर सकें।
1: बिल्कुल, इससे इनकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी बूस्ट हो जाती होगी ना। तो सर, एक और चीज थी मेरे माइंड में एज अ स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी लाइफ, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट द बुक्स और लेक्चर, इट्स आल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ, अगर इस पर कोई बात की जाए तो।
3: I definitely agree with it. I mean, it becomes really tough for the students sitting in class. Or given ke hum logon ka attention span jo hai, wo din ba din kam hota chala ja raha hai.
1: Bilkul, bilkul.
3: It's really tough to, you know, place students within a class and, you know, ask them to just go with the academic activities. So, you know, our department particularly, you know, they represent two societies within UCP. That is UCP Literary Society and the other one is Rhymester Society. So both these societies are showcasing creativity in their own way. Literary Society is talking about literatures and all the genres of literature in all languages. So jab humne Literary Society ko form kiya tha, we had that vision that it should not be particularly concerning the English language because literature tamam zubanon mein
1: bilkul
3: create kiye jaate hain, wo padhe jaate hain, appreciate kiye jaate hain. So our focus was more on the multilingual aspect of literature, and that is something that we showcase throughout, you know, the university. Aur uske through hum kafi events bhi karwate hain, book launches and, you know, discussions that could help students, those who want to study Punjabi literature, Urdu literature, Persian literature, any literature of that sort that they like. Iske saath saath particularly for poetry, because I think poetry is a dying form in current world, and it's very sad, but it is like that. So in order to keep you know, this cozy atmosphere for the students who have this yearning for rhymes, we have this Rhymester Society, and Nayaba, you're also associated with that society. So I think it's a brilliant project for the writers, those who want to write in verse. So, abhi recently we had a collaboration with the Japanese embassy.
1: Where we published
3: an anthology of haiku, and I think that was a very creative project led by Nayab and Sarosh. So that was brilliant. Also, you know, we have literary festivals organized, you know, every year we have these literary carnivals where we, you know, invite writers from, you know, different universities and, you know, different forums where, you know, they can come and collaborate with us. So the creative side of students have to be explored in terms of the fact that they are obviously a part of their, you know, literary faculty, but those who, you know, want to get into the publishing industry, that is also very important, because hum sirf ye nahi chahte ki students ka expression literature ko leke behtar ho, hum ye chahte hain ki wo kuch create bhi kare. So we create this liaison with the publishing industry as well, where students are publishing. We have so many students who have already published their books and it's in the market available, and then we also link it with the business of publishing as well, so it can be lucrative as well for our students, so they can, you know, cash their creativity. It's not just about writing books and then not getting anything at the end of the day. So that aspect I think is very significant in our department, that we do showcase a variety of creative activities.
1: Wonderful.
3: Every now and then.
4: Main bas isme ek cheez add karunga ki aapne ye jo cash karne ki baat ki, to cash karne ka एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी तो हो सकता है ना, नॉट एग्जैक्टली यूटिलिटेरियन इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो यूं भी तो हो सकता है कि जो रेलेवेंस है लिटरेचर का, क्या उसकी अहमियत लाइफ के लिए है या नहीं है.
1: एग्जैक्टली,
5: बिल्कुल.
4: एंड आई बिलीव कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हाउ? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोविड आया, और सारी दुनिया उसकी लपेट में आ गई। अब कोविड को आपने वैक्सीन आ गई, उससे तो रिकवरी हुई है, लेकिन वो जो लॉसेस हैं, वो जो मैसिव लॉसेस हुई है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है और उसके साथ जो ट्रॉमा रिलेटेड है, उसके लिए आप क्या करेंगे? Exactly. आपके पास क्या कोई रेमेडी है? वो रेमेडी आपको कहीं म्यूजिक में आएगी, कहीं डांस में आएगी, ये जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसके अंदर आएगी, और पोइट्री में आएगी। यानी अदरवाइज तो लाइफ एक बिल्कुल एक टीडियस तो इज एनी वे है, लेकिन उसके अंदर एक जो बोरियत और बेजारी का जो आंसर है, एलियनेशन का जो आंसर है, उसको काउंटर करने के लिए यू नीड गुड लिटरेचर। आपके रिचुअल्स हैं, आप शादी ब्याह हैं, आपकी जो फ्यूनरल्स हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल, उन्होंने जो शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश किया, और नज्म का उन्मान ही शेक्सपियर है, तो आप जरा ये देखें कि वो कैसे ट्रिब्यूट, एक बड़ा आदमी एक बड़े आदमी को कैसे ट्रिब्यूट पेश करता है। थोड़ी सी मुश्किल है, माजरत है, लेकिन तुझको जब दीदाए दीदार तलब ने ढूंढा, ये शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं, ताबे खुर्शीद में खुर्शीद को पिन्हा देखा, When the eye wished to see you and looked, it saw the sun hidden in its own brilliance. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. English mein iska yun hoga ki you were hidden from the eyes of the world, but with your own eyes you saw the world exposed and bare. और आखिर में कि हिफ्ज़ इसरार का फितरत को है सौदा ऐसा, राजदां फिर न करेगी कोई पैदा ऐसा। अब बेसिकली तो लाइक ओके, एक बड़ा आदमी है, मर गया, आपने उसे दफन कर दिया, अब उसको, लेकिन पीपल विल फॉरगेट दैट बट विल नॉट फॉरगेट दिस। तो इसके अंदर जो एक इटर्निटी का, और वो इटर्निटी है जो हमें नेचर के साथ फिर लिंक करती है।
1: Behtareen. So that's a great news for our aspiring students. Well, now here I would like to talk to my listeners ki agar aap interested hain to please do not wait. Apply kare aaj hi. University of Central Punjab ki website par unka contact number hai. Aap personally visit bhi kar sakte hain. I'm very inspired by the department. Aaj ke show ke liye bas itna hi, but conversation, of course, it doesn't end here. If you have any questions, feel free to reach out to university. Thank you to our guests for sharing the valuable insights, and thank you, dear listeners, for tuning in. Until next time, this is your host, Nayab Afzal. Stay inspired, keep learning. FM 92.6 UCP Ki Duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

खान साहब आपको कम ही जुल्फकार बुखारी जैसे डायरेक्टर रेडियो मैसर होंगे। खान साहब कब टलने वाले थे, उन्होंने फौरी जुमला दागा, जवाबी जुमला दागा कि पाकिस्तान को जुल्फकार बुखारी जैसे लोग तो बेशुमार मिल जाएंगे, बड़े गुलाम अली खान जैसा फनकार मैसर नहीं होगा, नसीब नहीं होगा। ये कहा ये जा वो जा। उससे पहले हिंदुस्तान के, भारत बल्कि हिंदुस्तान का वह भारत है, जवाहरलाल नेहरू उनका नाम था, उन्होंने पहले से ही बड़े गुलाम अली खान साहब को ये दावत दे रखी थी कि जी आप हिंदुस्तान भारत तशरीफ ले आए, यह हम आपको बहुत ज़्यादा पजीराई देंगे। लेकिन खान साहब ने कहा था नहीं, कसूर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पाकिस्तान के हिस्से में आया और पाकिस्तान जिस नाम से बना मैं क्यों छोड़ूंगा इसको। लेकिन इस वाक़े से इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की ये पेशकश कबूल कर ली और भारत चले गए और वहीं मुकीम हुए। ठीक है, आजकल उनका पोता जो है रज़ा अली खान के नाम से बड़ा मशहूर हिंदुस्तान का गायक है, मौसीकार है, क्लासिकी मौसीकी में अपना आला और रफा मकाम रखता है। अच्छा, उन्हीं के साथ साथ, ये तो थे बड़े गुलाम अली खान, उन्हीं के साथ साथ कसूर में ही एक और गुलाम अली खान साहब पैदा हुए। उनको खिताब दिया गया छोटे गुलाम अली खान का, यानी आप गौर कर लीजिएगा कि जैसे स्पोर्ट्स में होता है जूनियर रशीद सीनियर, रशीद जूनियर, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, हॉकी में सुना होगा आपने, तो यहाँ उन्होंने कितना खूबसूरत नाम दिया, अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए। वो बड़े गुलाम अली खान थे, इनको छोटे गुलाम अली खान का नाम दिया गया। कहते हैं ये भी बिल्कुल बड़े गुलाम अली खान की तरह ही यद तूला रखते थे असरार और रमूज में क्लासिकी मौसीकी के, इसलिए उनको छोटे गुलाम अली खान का नाम दिया गया। और आज का मौजू जो है इसको मैं ला रहा हूँ अपने उस समत की तरफ जिसमें के दुनून लाहौर की पहली कहानी आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। छोटे गुलाम अली खान साहब, जाहिर है कसूर बहुत छोटा सा कस्बा था, अगरचे बहुत नामवर कस्बा है कि बाबा बुल्ले शाह वहाँ मदफून हैं, मलकतन नूर जहाँ वहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से रोज़गार की तलाश में, हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की तलाश में लाहौर तशरीफ लाए और लाहौर के अंदरून मोची दरवाज़ा में आके आबाद हो गए छोटे गुलाम अली खान। और इनको लोगों ने, अरबाब इख्तदार ने पज़ीराई बख्शी, क्योंकि उनके जहन में होगा यकीन ना बड़े गुलाम अली खान साहब का किस्सा। तो इनको इन्होंने जब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बनी, रेडियो पाकिस्तान में तो थे ही थे, वहाँ ये बाकायदगी से रिकॉर्डिंग भी करवाया करते थे और गाया भी करते थे, सिखाया भी करते थे। इनको उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी का बाकायदा, चूँकि कुछ चीज़ें रास्ते में माने थीं, कुछ चाहिए था उनको, उन्होंने डायरेक्टर तो नहीं बना सकते थे, ज़ाहिर लिखना लिखाना भी पड़ता है आपको पता है, तो ये मन मौजी लोग होते हैं, इनका गला ही सब कुछ होता है, इसलिए उनको वहाँ डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा अदा किया। ये मैंने खान साहब की जबानी भी सुना और बाद में हमारे एक दोस्त थे अलहमरा आर्ट काउंसिल में होते थे उनसे भी मैंने सुना, तस्दीक हुई कि वाकई ये वहाँ के। और बारहा हमने देखा, बहुत दफ़ा देखा हमने कि हम लोग शहर गए हुए हैं, चूँकि मेरा भी अंदरूनी शहर से ताल्लुक़ है, तो कुछ फनकारान फनकार आए और फनकार मेल और फीमेल दोनों आए, खासतौर पर इंडिया से आके वहीं पूछते थे सबसे पहले, छोटे गुलाम अली खान का घर इसी तरफ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहते हैं ना कि शादी का बड़ा मशहूर कॉल है कि खुशबू वो है जो अपना पता आप बताती, मैं पहले भी बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ, ना कि वो है जिसका पता अतार को बेचने वाले को बताना पड़ता है। तो ये है ना सुरीले लोग, अभी आपको समझ आ गया होगा, इनकी सुर की महक जो है ना वो फैल जाती है। तो हिंदुस्तान से जितने भी फनकार आते थे ये पूछा करते थे, आप हमें बता देंगे छोटे गुलाम अली खान साहब कहाँ रहते हैं। सो ये छोटे गुलाम अली खान साहब ने अंदरून मोची दरवाज़ा एक मकान लिया और उसको अपना मस्कन बनाया। उस तरीके से ये जो सफ़र था जिसको मैंने नाम दिया सुरीले लोग, वो जो कि
पटियाला घराने से शुरू हुआ, कसूर पहुंचा। कसूर से बड़े गुलाम अली खान साहब का तरके पाकिस्तान करने पर अल्लाह ताला ने जाहिर है हर चीज का बंदोबस्त किया होता है, छोटे गुलाम अली खान साहब तक मुंतकिल हो गया। और उन्होंने इसको लेके आना था, जैसे आजकल के जमाने में होते हैं ना फ्लोटिंग सीट, कुछ लोग ऐसे जुजवे ला युनफक होते हैं कि वो जहां जाते हैं अपने लिए सीट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है, एक वाकया बता दूं आपको यहाँ, कि अब्दुल सलाम साहब थे जो डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल लॉरिएट, जिनको 1979 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो वो ट्रिएस्टे में इटली में जो था इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्रेटिकल फिजिक्स ICTP वहाँ पढ़ाया करते थे, लेकिन इंग्लिस्तान में इम्पीरियल कॉलेज में फिजिक्स का डिपार्टमेंट उसी वक्त खुला करता था जब डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब इंग्लिस्तान आया करते थे। तभी आपको समझ आ गया, कुछ लोग होते हैं वो जहाँ जाते हैं अपना तारुफ खुद ही कराते हैं कि आप अपना पता खुद हवा बहार किए। तो छोटे गुलाम अली खान साहब ने ये एजाज बख्शा साकनाने मोची दरवाज़ा को कि खान साहब की वजह से मोची दरवाजे का शोहरा जो था, उसकी जो शोहरत थी वो पूरे पाकिस्तान में फैल गई। सो ये कसूरी घराना इस तरीके से लाहौर में आके आबाद हुआ। सामीन, पहली किस्त यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि याद रखिएगा आप लोग सारे, खासतौर पे मेरे जो सुनने वाले मेरे शागिर्द भी होंगे बेशुमार, मैं 6 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ UCP में, तो सुनेंगे यकीनन, उनसे मैं शेयर भी करूँगा। तो बेटा, तवालत जो होती है ना वो बाज़ोकत बोरियत का बायस होती है, इसलिए ऐसे नहीं कहा जाता कि वक्फा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम एक बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ठीक है, और आज इस पहली किस्त का इख्तिताम भी होता है, यहाँ से सिलसिला टूटा। इंशाल्लाह अगली किस्त में, अगले प्रोग्राम में वहीं से जोड़ने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मूजी मर्ज से पूरे जहान को, बिलखसूस अर्ज़ पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.
5: No. 1 radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: worry. That's why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh nahi main janda baby tu jaan ji main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया UCP की दुनिया UCP की दुनिया।

Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP ki duniya.
1: Ek naya andaaz,
2: ek nayi soch,
1: ek nayi pehchan,
2: ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से.
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1.
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया.
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
1: सुनते रहिए.
3: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब. दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब.
4: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वंस अगेन वेलकम बैक, आप सुन रहे थे ये हौसला। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इस ट्रैक को सुनने के बाद। एंड आई होप सो कि आपको भी मिली होगी कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हौसला कम नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और ज़िंदगी को बाहें पसारे हमें ऐसे ही लपेट कर बहुत सारे ऐसे गमों को, जिन्हें जो गम हमें तोड़ने के लिए आते हैं, जो गम हमें परेशान करने के लिए आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें कहीं लपेट कर किसी गठड़ी में बांध कर ये कह देना चाहिए कि अभी रुको, मेरे में कुछ हौसला अभी बाकी है। और यही वो हौसला है जो हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे असाध्य भी देते हैं। एग्जैक्टली उसकी रीज़न क्या है? मैंने बहुत सारे बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा फील होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बहुत दफ़ा आ चुकी है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आपकी क्लास में जो किसी ऐसी आउटस्कर्ट से आए हुए होते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी वर्सटैलिटी आती है जो क्लासेस की, जहाँ पर आपको डील करना पड़ता है बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, बात नहीं करते, जल्दी खुलकर सामने नहीं आते, थोड़ा सा जो है वो शाई फील करते हैं और उनको लगता है कि अच्छा हम अगर लाहौर शहर में आ तो गए हैं लेकिन इन सब लोगों के साथ जलन करने में, मिंगल अप होने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा दबा कर बैठे रहते हैं क्लास में। सो मैं पर्टिकुलरली उन बच्चों पर बहुत फोकस करती हूँ और मेरी तवज्जो उन लोगों पर ज़्यादा होती है जो लाहौर से बाहर से पढ़ने के लिए आए हुए हों, ताकि वो बच्चे जो हैं बिल्कुल आउटसाइडर फील ना करें और उन्हें हम यही भी फीलिंग दें कि हाँ आप हम में से ही हैं और अब आपने 4 साल या 2 साल जो हमारे साथ गुजारने हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने घर में हों। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तमाम असातिज़ा पर कि वो उनमें किसी भी किस्म की क्लासिफिकेशन ना हो। अच्छा, मेरे पास तो इतनी सारी बातें आज करने के लिए, और मैं सोच रही थी कि मैं किन किन अपने असातिज़ा का जो है वो शुक्रिया अदा करूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने मुझे एक ऐसा उस्ताद बनाया जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। मुझे इस इदारे ने बहुत इज़्ज़त दी और इस इदारे में बहुत सारे ऐसे असातिज़ा के साथ मैंने काम किया है जिन्होंने ना सिर्फ बल्कि मुझे पढ़ाया, मेरे साथ जो है उन्होंने एज कलीग भी काम किया। वो कहते हैं ना कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। सो कुछ असातिज़ा ऐसे होते हैं जो ऐसे तराश देते हैं कि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आती है जिसके बारे में कभी कभी हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आज आप जहाँ भी सुन रहे हैं अपने किसी उस्ताद को आज टेलीफोन कॉल करके उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत मुस्बत तब्दीली आई। मैं याद करती हूँ उन तमाम असातिज़ा कराम को, मैं जितनों के नाम मुझे इस वक्त याद हैं और जितनों को मैं शुक्रिया अदा कर सकती हूँ मैं उनको ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे तमाम स्कूल के असातिज़ा कराम और मेरे कॉलेज के असातिज़ा कराम जो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैम गज़ाला हैं, सर यासिर हैं, सर अनवार हैं, फिर उसके साथ मैम नसरीन का जिक्र मैंने पहले किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल खुर्शीद साहब, मैडम नास्ट्रा, फिर उसके बाद मेरी कॉलेज की जो हैं मेरी प्रोफेसर मैम मेरे साथ जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, मैम गुलनास और मैम गज़ाला दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे पहले डीन जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर मुकसुद्दीन शेख, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। फिर उनके बाद जो है हमें और भी डीन्स ने ज्वाइन किया, हमें प्रोफेसर डॉक्टर हन्नान ने ज्वाइन किया, प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर ने ज्वाइन किया और अब हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फवाद बेग मौजूद हैं जो कि हमारे करंट डीन हैं। सभी लोगों के साथ काम करके सभी असातिज़ा से कुछ ना कुछ सीखा है। सो जब आप ऐसे गुलदस्तों के साथ काम करते हैं जहाँ से आपको आपने थोड़ी थोड़ी जो है वो हर एक से ज़रा ज़रा सी खुशबू लेकर आप एक गुलदस्ता बनाते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा निखार भी आता है। इसी तरह से मैम बुशरा हैं, मैम आबदा हैं जो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, डॉक्टर नौशीना हैं, बहुत से ऐसे लोग, डॉक्टर रफीरा को बहुत याद करती हूँ, डॉक्टर शफीक जलंदरी हैं, सर वकार हैं, नवीद साहब हैं, शफीक कंबो साहब हैं। सो मैं किन किन का नाम लूँ, इतने सारे असातिज़ा हैं जिन्होंने بہت بہت کچھ سکھایا, اور آج ہم جس مقام پر ہیں ہم انہی اساتذہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں غریق رحمت کرے, اور جو موجود ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اسی طرح سے ان پودوں کو آگے بڑھاتے رہنے کا حوصلہ اور ہمت دیتا رہے, اور وہ اسی طرح سے اپنے جو شاگرد ہیں انہیں, وہ جو ایک چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں جب جب درخت لگتا ہے تو پھر شاخیں نکلتی ہیں, تو ہم وہی شاخیں ہیں جو پھر ایک تناور درخت میں بدل دیتی ہیں. اور اس میں جو پانی اور جو اس کو سراب کرنے کا سب سے بڑا جو سہرا سچتا ہے وہ ان تمام اساتذہ کے سر سچتا ہے. سو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, میرے ساتھ میرے بہت سارے اچھے کلیگز جیسے مس چکشی ہیں, ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں یہاں, اور میرے ریڈیو میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میری اپنی پوری ریڈیو کی ٹیم جس میں سہیل صاحب ہیں, جس میں یاسر صاحب ہیں, جس میں ذیشان ہیں, جس میں فرحان ہیں, اور میں کسی کو بھول تو نہیں گئی, صالح حیدر ہیں, اللہ تعالیٰ کہ میرے سے لڑائی کرتے ہیں پھر بعد میں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو. تو ان سب لوگوں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سو استاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ استاد جو کہ آپ کے کلاس روم میں آپ کے ساتھ موجود ہو, استاد جس سے آپ نے ایک لفظ بھی سیکھا ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قول ہے کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ آپ کا استاد ہے, اور یہ جن کا قول ہے ڈیفینیٹلی. ابھی میرے پیچھے چونکہ میوزک چل رہا ہے تو میں اس لیے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میں کہوں گی میوزک کو ذرا ڈاؤن کر دیں. تو مولا علی نے بھی یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا وہ آپ کا استاد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت بات, چونکہ آپ کی سنگت پر بڑا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کلیگس کام کرتے ہیں وہ بھی استاد ہوتے ہیں, اور آپ جس بھی فیلڈ میں ماہر ہیں یا جس بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, وہ ٹیچنگ ہے یا کسی اور فیلڈ میں آپ کے استاد موجود ہیں, تو آپ نے ان کا بھی اسی طرح سے ادب اور احترام کرنا ہے. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ جو جیسے میرے ساتھ بہت سارے ایسے فرینڈز ہیں جو کہ ٹیچرز ہیں, تو میں ان کو یہ کہا کرتی ہوں کہ بڑی بات, ویسے تو یہ بچوں پر اپلائی ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹس کو ہم اکثر یہ تاکید کیا کرتے ہیں کہ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں, کیونکہ یہ بھی مولا جی نے فرمایا تھا کہ جو اپنے جو ہوتے ہیں نا دوست, ان کو بڑے احتیاط سے چنا کرو. اس کی ریزن یہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ اپنے دوستوں کو احتیاط سے اس لیے چنا کرو کہ وہ تمہارا تعارف بن جایا کرتے ہیں. سو ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جو ہمارے پیئر پریشر میں آتے ہیں یا ہماری سوشل سرکل میں آتے ہیں, ان کو چننے کے لیے, ان کے ساتھ چلنے کے لیے یہ بات بھی مد نظر ضرور رکھا کریں کہ کل کو یہ ہمارا تعارف بنیں گے. سو اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کا چناؤ کر سکیں گے جو واقعی میں آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ چھٹ جائیں گے جو آپ کو لگے گا وقتی طور پہ کہ نہیں ان کا ہونا ضروری تھا, لیکن وہ کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت زندگی سے دور چلے جاتے ہیں. سو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص موجود تھا یا ہیں جو تھوڑا تھوڑا مڑا مڑا دور جا رہے تھے, جان دب ٹینشن لینی تو سی ٹھیک ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. سو موونگ آن ٹوورڈز اندر میوزیکل ڈوز, واپس آتے ہیں, کہیں مت چاہیے گا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا, اور میں ہوں ڈاکٹر ہنا دیب.

अच्छा बनाने का वो फन रखते हैं। और इसी तरह से एक और मुश्तरक चीज जो मुझे टीचर और सड़कों में नजर आई, ये रोड्स हमेशा वहीं रहती हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि दोनों अपनी जगह पर ही रहते हैं, टीचर भी और सड़क भी, मगर वो दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है, और कई बार ये रास्ता जो है वो आसान नहीं होता, ये बहुत ही दुश्वार रास्ता होता है। और एक उस्ताद के इस मर्तबे तक पहुंचने के लिए आपको पंजाबी से कहने बड़ी पी काटनी पड़ती है, ठीक है, सो बड़ी बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, बहुत कुछ जो है वो सहना पड़ता है। और मैं ये देखती हूँ कि आज का जो ये जो वक्त चल रहा है, इसमें बहुत सारी जगहों पर ये शिकायत की जाती है कि टीचर्स जो हैं उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो आज से चंद साल पहले दी जाती थी। सो ऐसा क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, इस पर डेफिनेटली गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे उस्ताद अगर मेरे सामने आज भी आ जाएं तो मेरे कदम वहीं थम जाते हैं, मैं वहीं रुक जाती हूँ, झुककर पहले सलाम करके फिर हम उनका पहले वो गुजरें और फिर हम उनके बाद गुजरते हैं। ये अदब और एहतराम ये आज भी लाजिम व मुलज़ूम है। हम जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, हम ज़िंदगी में जो कुछ मर्ज़ी कमा लें, जितने मर्ज़ी बड़े डेजिग्नेशन पर आ जाएं, लेकिन जिनकी वजह से हम इन डेजिग्नेशन पर हैं, आई थिंक सबसे पहले जो है वो उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो है वो हम पर लाजिम व मुलज़ूम है। सो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे उस्ताद होते हैं जिन्हें कुछ टीच अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ शिकायत होती हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर्स के साथ भी शिकायत होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हमेशा मैंने कई जगहों पर देखा कि एक जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेनटेन इन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। सो फासला बहुत हद तक बहुत मायने रखता है, और एक उस्ताद का एहतराम जो है वो इस फासले तक, ये जो फासला उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है, ये वो फासला है जो बताता है कि हाँ भाई दिस इज़ द लिमिट, और यहाँ पर आकर आपको बताना है कि मैं उस्ताद हूँ, और ऑन द अदर साइड ऑफ द पोडियम एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द माइक एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल देर आर स्टूडेंट्स। सो ये बहुत खूबसूरत और बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो आकर आपसे शिकायत भी करते हैं, चूंकि ये स्टूडेंट साइकी होती है और इसको आप बदल नहीं सकते कि मैम मुझे नंबर्स कम दिए, मैम ये प्रॉब्लम हो गया, मैम वो प्रॉब्लम हो गया। सो आपको वो जस्टिफाई करना, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साथ-साथ के कंधों पर। बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपके हाथ में बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल हो तो आपने हर एक लफ्ज़ को पढ़कर परख कर फिर आपने उनकी पेपर चेकिंग करनी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये किसी भी लेवल पर हो, ये इसकी ट्रेनिंग्स होना, फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में मैं अपने इदारे की तारीफ इसलिए भी करना चाहूँगी कि जैसे ही हमारे समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं तो फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और हमें पूरे 3 महीने जो है वो डिफरेंट तरह की पेडागॉजिकल अप्रोचेस पर सिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, AI के साथ आपने टीचिंग स्किल्स को कैसे एनहांस करना है, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिन पर फोकस करने के बाद आपकी अपनी क्लासरूम की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। सो दीज सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द हायर लेवल टीचर्स एज वेल। एंड टर्शियरी लेवल से आप स्टार्ट कर दें तो प्राइमरी लेवल तक और फिर आपके सेकेंडरी लेवल तक के टीचर्स की ये ट्रेनिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं जैसे पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे इदारे जो हैं वो कुछ काम कर भी रहे हैं, कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो हो भी रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को इस तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि फार फ्लंग एरियाज़ में भी, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि असातिज़ा जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हें नए दौर के साथ जिद्दत के साथ जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके साथ उनकी आगाही फराहम करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट को जो है टीचर्स के लिए भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स अभी की करंट गवर्नमेंट ने लिए हैं, बहुत डिफरेंट तरह के जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन आई थिंक टीचर्स के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर मुख्तस करना चाहिए सो दैट कि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके और वो भी अपने प्रोफेशन में दिलजमी के साथ अपना किरदार अदा कर सकें, चूँकि आने वाली नस्लें जो हैं उनका दारोमदार जो है वो बहुत हद तक इन असातिज़ा के हाथ में है। सो अगर ये इक्विप्ड होंगे, ये वेल एजुकेटेड होंगे, ये अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में कामयाब रहेंगे, और ये जहनी और जिस्मानी दोनों सूरतों में जो है वो सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे,

Once again, welcome back to again when Bakhir Ragli World and Up aap sun rahe hain FM 92.6 UCP ki duniya aur main hoon Dr. Hina Adib in a very very special transmission which is dedicated to all the teachers out there. Wo kehte hain na ki one book, one pen, one child and one teacher can change the world. So आपने सिर्फ अपने घर से आगाज़ करना है, जैसे अक्सर कहा जाता है दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. सो जो चीज़ हम अपने बच्चों के सामने करते हैं वही वो अमल दोहराते हैं और वही चीज़ उनके साथ सारी ज़िंदगी के लिए रहती है. ये घरों में जितनी माएँ सुन रही हैं उनके लिए भी है और जितने वालदैन सुन रहे हैं उनके लिए भी है और जितने असातिज़ा सुन रहे हैं उनके लिए भी है. और जाते जाते जो है वो मैं कहना चाहूँगी सभी टीचर्स को वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच फॉर द विजडम, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी पर्टिकुलरली एंड योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दैट शेप्ड माय फ्यूचर. एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल माय टीचर्स आउट देयर. जितने भी मुझे असातिज़ा सुन रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और जाने से पहले यही कहूँगी कि हम जहाँ कहीं भी हों, जिस हद तक और जब तक हम में हिम्मत है, हम एक अच्छे उस्ताद बनने की कोशिश करें. हम अपने आने वाली नस्लों में वो तमाम चीज़ें जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी 80s और 90s की वो जनरेशन जो है वो ज़्यादा विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें कोई बंदा जो है वो प्लीज़, जितने मुझे जेन ज़ी सुन रहे हैं वो कहेंगे कि मैम पता नहीं शायद कोई आउटडेटेड बात कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अदब के लिहाज से वो एक बहुत ही खूबसूरत मिलेनियल्स का दौर गुजरा है और जिनसे मेरा भी ताल्लुक़ है ऑब्वियसली. अल्लाह करे कि हमारे आने वाली नस्लें इसी तरह से उस्ताद जितने भी उनकी ज़िंदगी में आए, असातिज़ा कराम जितने भी आए, उनको इज़्ज़त भी दें, उनको एहतराम भी दें और उनकी बात को गौर व फ़िक्र से भी सुने. और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो. खुदा ताला आप सभी लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले साल दोबारा अपने किसी उस्ताद के साथ एक प्रोग्राम ज़रूर करूँगी, रिकॉर्ड और या फिर लाइव प्रोग्राम, जैसे आज जो है वो आप सभी लोगों के साथ जो है वो लाइव प्रोग्राम की इस नशरियात को मैंने आपके साथ शेयर किया. आई होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, महसूस हुए होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जीते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए और जो कुछ सीखें उसे आगे पढ़ाते रहिए. तब तक के लिए डॉक्टर हिना अदीब को दीजिए इजाज़त. खुदा आपका हामी नासिर हो, अल्लाह निगेबान.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Assalamu alaikum sir, I'm Savera from the radio team. I want to ask a question. What does being a teacher mean to you personally?
1: Assalamu alaikum, mera naam Dr. Atif Ashraf hai. Main HOD hoon, Faculty of Media and Mass Communication in University of Central Punjab, Lahore. Teacher ya teaching ek passion hai aur ye wo passion hai jo sirf bachchon ki grooming hi nahi karta, unko ilm ki रोशनी से रोशनास नहीं करवाता बल्कि उनकी तरबियत भी करता है, उनका हिडन पोटेंशियल सामने लेके आता है और उनको अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से वो तमाम बातें, वो तमाम तजुर्बात शेयर करता है जिनकी उनको मुस्तकबिल में ज़रूरत हो सकती है। तो जो टीचर है, मेरे नज़दीक टीचर एक कौम का जो एक मुस्तकबिल है वो क्रिएट करता है, एक पूरी नस्ल की तरबियत के लिए जो टीचर अपना, जिसे वो कहते हैं कि खून पसीना एक करता है, अपनी एनर्जीज को, अपने इल्म को, अपनी तवानाइयों को उन बच्चों के लिए सर्व करता है। और ये टीचर ही हैं जो हीरे तराशते हैं, जो अपनी क्लास के अंदर से उन बच्चों को जो खामोश बैठते हैं उनके टैलेंट को हंट करते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, उनको दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आएँ और अपना टैलेंट, अपनी काबिलियत का इजहार करें। बिकॉज टीचर का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना नॉलेज इम्पार्ट कर दे बच्चों के अंदर, बल्कि जो एक टीचर है वो बच्चों को सोचना सिखाता है, उनको सीखना सिखाता है और उनको एक तलब, एक प्यास देता है इल्म की, जिससे बच्चे खुद एक इल्म को हासिल करने के जस्तजू करते हैं। और यही बच्चे जब आप उनमें एक स्पार्क क्रिएट कर देते हैं लर्निंग का, कुछ सीखने का, यही बच्चे बड़े होकर शमा से शमा जलाते हैं और इल्म का जो शमे हैं उससे फिर पूरा मुआशरा रोशन होता है।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि

इसके बाद नूरजहां ने 1960 से 1970 तक के अशरे में पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए जो सुपरहिट हुए, और इनमें से बहुत से गीतों का शुमार सदाबहार गीतों में होने लगा।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से ज्यादा अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद है।

मैडम नूर जहाँ एक अहद थी, एक अदाकारा, एक इदारा जो दुनिया फानी से तो कुछ कर गई लेकिन नस्लों तक के सीखने को बहुत कुछ छोड़ गई। नूर जहाँ का शुमार इन फनकारों में होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने, बल्कि तरन्नुम के गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। 9 वर्ष की उम्र में नूर जहाँ की आवाज़ ने पंजाबी मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने नूरजहां के लिए खसूसी तौर पर नातें, गजलें और लोकगीत कंपोज किए। फिर नूरजहां का खानदान कलकत्ता मुंतकिल हो गया, जहां मारूफ गुलुकारा मुख्तार बेगम ने नूरजहां और इनकी दो बहनों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को भी इनके नाम तजवीज किए। 1935 में उन्होंने पिंडी कोड़ी से अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद फिल्म मिस्र का सितारा में अदाकारी के साथ साथ कई गीतों को अपनी आवाज भी दी। 1937 में बनने वाली फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार अदा किया। फिर वो लाहौर चली आईं और कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वापस बम्बई चली गईं, जहाँ अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुरुकारी का सफर भी जारी रखा। वो कुछ अरसे बाद वापस चली गईं, सारी तवज्जो प्लेबैक से।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरी बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नगमों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया। सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नी। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, जहां हमारा प्रोग्राम चल रहा है UCP फैकल्टी आर, और मैं हूं आपकी होस्ट नायाब अफसल। टुडे वी हैव एन एक्साइटिंग सेशन जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे UCP के इंग्लिश डिपार्टमेंट को। ऑल्सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं और सोच रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या हो सकता है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। यहाँ हम आपको अपने बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स से मिलवाएंगे और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कोशिश करेंगे कि आपके जहन में जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे सकें। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी अपने स्टीम्ड प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ। वी हैव डॉक्टर ताहिर सलीम, जो कि एक प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा ही इज ऑल्सो सर्विंग एज एसोसिएट हेड डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर हबीब काजी, हु इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। हमारे साथ हैं मिस अरीबा, शी इज अ लेक्चरर एट इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड टीचिंग लिटरेचर मेनली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीवन एट आवर शो।
3: वालेकुम अस्सलाम मिस नयाब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस।
2: राइट सर, थैंक यू सर। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट मैं जानना चाहूंगी कि आप मुझे डिपार्टमेंट का एक पूरा ओवरव्यू बता सकें, तो लाइक डिपार्टमेंट में कौन से की प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और लाइक क्या क्या हमारा करिकुलम में ऐड है, ताकि मैं एज अ स्टूडेंट इसे ऑप्ट करने की कोशिश करूँ।
3: जी मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हम BS इंग्लिश का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ये लिटरेचर और लैंग्वेजेस दोनों के सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं BS इंग्लिश में। उसके अलावा हम MS अप्लाई लैंग्वेजेस ऑफर करते हैं, MS इंग्लिश लिटरेचर ऑफर करते हैं, और PhD इन इंग्लिश लैंग्वेजेस हम ऑफर करते हैं। तो हमारे बड़े ही ये डाइवर्स प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के जो क्रिटिकल इंक्वायरी है ये स्किल्स डेवलप किए जाएं, उनके कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स डेवलप किए जा सकें, और
2: Amazing.
3: उनको प्रिपेयर करें हम करियर्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक पब्लिशिंग, पासिंग CSS एग्जाम्स, एजुकेशन, डिप्लोमेसी एंड मीडिया।
2: Inspiring सर, ये डाइवर्सिटी जो प्रोग्राम्स आपने मुझे बताई, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू ओपन डोर्स फॉर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। बट इससे पहले कि हम करियर अपॉर्चुनिटीज पर बात करें या फिर हम ये बात करें कि हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को किस तरह से ऑप्ट कर सकते हैं, सर दैट्स रियली इंस्पायरिंग। आई मीन जो आपने डाइवर्सिटी बताई प्रोग्राम्स की, ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और बहुत लाइक मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है। ऑफकोर्स मुझे तो मतलब मैं पर्सनली इसको जरूर ऑप्ट करना चाहूंगी। अच्छा सर, एक और सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा था एंड ऑफकोर्स हमारे लिसनर्स के माइंड में भी आ रहा होगा, कि इसमें हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लाइक करियर के हवाले से ये किस तरह से मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट या फिर ऑप्ट करना लैंग्वेज, लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स किस तरह से हेल्प कर सकता है।
3: जी मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। हम काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम रेगुलरली MOU साइन करते हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, और उनके मुताबिक ही हम अपने करिकुलम को भी डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड कमेटी है, इस कमेटी में 2 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो इंडस्ट्री से होते हैं। हम उनको रेगुलरली इन्वाइट करते हैं और अपने कोर्स आउटलाइंस को उनसे रिव्यू करवाते हैं, और अपने जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनको लिंक करते हैं कि वो इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उनको फुलफिल करती हैं कि नहीं। इसका मकसद ये है कि ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को वो करिकुलम पढ़ाएं जिसको वो पढ़ें, सीखें और जाके मार्केट में अपनी जॉब तलाश कर सकें, और वी मेक देम रेडी फॉर द जॉब्स। एक्चुअली दिस इज़ आवर पर्पज़ एंड अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन आवर कोर्स ऑफ लाइन्स।
2: سر بہترین, مطلب یہ تو کافی انٹرسٹنگ ہو گیا کہ ماڈرن ٹرینڈس کے اکارڈنگ ہمارے اسٹوڈینٹس پریپیئر ہو رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ لائک کس طرح سے ان کے فیوچر ہو سکتے ہیں. سر جو آپ نے بیسٹ بات کی جو مجھے پرسنلی انٹرسٹنگ لگی وہ تھا سی ایس ایس, کیونکہ آج کل سب لوگوں کا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے سی ایس ایس کرنا, کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف آنا. تو مس اریبا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ
4: Actually, definitely, I would like to poll in, particularly for the question ke, what the market requires at this point, because the market has changed drastically. Now, if we talk about language and literature in particular, so hum is cheez ko samajhne mein kafi der kar chuke hain ke market requirement jo hai wo change ho chuki hai. In terms of literature, what I see and I've seen my students working in various fields as well, content writing is a very promising, you know, field where students are working. Now, this is something that they can earn while they are students and after completion of their degree as well. And then one field that I, you know, personally feel ke yahan pe students ka zyada rujhan hona chahiye, that is drama and theater. They can write scripts for the dramas, you know, they can indulge themselves in theater, they can work with the dramatist, and we have so many students who are writing their books as well. So if you're into writing and you want to publish your books, then definitely ye ek aisa route hai that is going to formally, you know, make you a good writer, not in terms of the fact ke you would just publish your book, but the fact ke you can, you know, produce a good body of criticism around it as well. So in that instance, I think language, literature and linguistics, you know, it can, you know, promise you a good future. Willing ke aap kitne interested hain to, you know, get into, you know, the diversity of the market, because it's not just limited to the fact ke aap sirf, you can opt teaching literature or language, but it can go beyond that as well.
2: Well, this is very interesting, Miss Ariba. Mujhe to kafi maza aa raha hai janke, aur still I have so many questions. But right now, let's take a little break. Stay with us. We'll be right back. FM 92.6.

0: तीजतन हमारे बहुत सारे MSK और PhD के जो स्टूडेंट हैं, इवन बिफोर हैविंग कंप्लीटेड देयर डिग्रीज, दे हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स.
1: Amazing.
2: Okay,
1: amazing.
2: Let me add here, Dr. Kazi, thank you for adding all this. Our students, this is my claim. ये मेरा दावा है कि हमारे students जो अभी MS कर भी नहीं रहे होते, जैसे Dr. Kazi ने बताया, वो impact factor journals में publish कर रहे हैं. BS के students जिनका भी BS complete नहीं हुआ, वो impact factor journals में publish कर रहे हैं. And it was previously a myth that people from literature and linguistics, they cannot publish in impact factor journals. Now we have busted that myth, and now we are continuously publishing in impact factor journals. Exactly. And then our young lecturers, they are publishing in impact factor journals. We are expecting from our PhDs that they should publish in impact factor journals. They all are publishing, but young lecturers, young students, they all are publishing in impact factor journals. So it is my claim that my department is publishing the best research in Lahore and even in Pakistan in top quality journals.
0: True that.
1: बेहतरीन सर, मेरे जहन में अभी भी कुछ सवाल हैं रिसर्च से रिलेटेड. विल एक्सप्लोर देम ऑफ कोर्स राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड विद अस. इस इज FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 92.6 जहां हमारा इस वक्त शो चल रहा है UCP फैकल्टी आर। यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमें डॉक्टर ताहिर बता रहे थे रिसर्च के बारे में। सर, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल था जो शायद एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट सभी के माइंड में आ रहा हो कि क्या BS का बच्चा भी रिसर्च में इन्वॉल्व होता है या वो भी कोई थीसिस लिखता है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल होता होगा ना, फर्स्ट टाइम रिसर्च के साथ फेमिलियर होना, इतनी टेक्निकलिटीज में आना।
2: जी मिस ने आप, मैं आपके सुनने वालों को स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि HEC का जो करिकुलम है उसमें मेंशन किया हुआ है कि टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना है रिसर्च राइटिंग के हवाले से फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 जहां हमारा शो चल रहा है यूसीपी फैकल्टी और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रिसर्च पे। तो जी सर, आप बताना चाह रहे थे
2: जी,
1: कुछ?
2: मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल सिंपोजियम्स एंड देन सेमिनार्स एंड वेबिनार्स। इसमें हम जब इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर आज़ादी देते हैं कि वो इनको ऑर्गेनाइज करें ताकि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें, और हम उनको ये भी चांस देते हैं कि वो जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे यूनिवर्सिटीज में आते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज से जो टीचर्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स आते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, उनके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो सके और अपने वो इंटरनेशनल लिंक्स डेवलप कर सकें, और इससे हम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जो स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, ग्रूमिंग है, उसको वो इन्हेंस कर सकें, और हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि ताकि वो मार्केट में जाएं तो सक्सेसफुल ज़िंदगी अपनी गुजार सकें और जितने ज़्यादा चांसेस अवेलेबल हैं मार्केट में उनको अक्वायर कर सकें।
1: बिल्कुल, इससे इनकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी बूस्ट हो जाती होगी ना। तो सर, एक और चीज थी मेरे माइंड में एज अ स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी लाइफ, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट द बुक्स और लेक्चर, इट्स आल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ, अगर इस पर कोई बात की जाए तो।
3: I definitely agree with it. I mean, it becomes really tough for the students sitting in class. Or given ke hum logon ka attention span jo hai, wo din ba din kam hota chala ja raha hai.
1: Bilkul, bilkul.
3: It's really tough to, you know, place students within a class and, you know, ask them to just go with the academic activities. So, you know, our department particularly, you know, they represent two societies within UCP. That is UCP Literary Society and the other one is Rhymester Society. So both these societies are showcasing creativity in their own way. Literary Society is talking about literatures and all the genres of literature in all languages. So jab humne Literary Society ko form kiya tha, we had that vision that it should not be particularly concerning the English language, because literature tamam zubanon mein
1: bilkul
3: create kiye jate hain, wo padhe jate hain, appreciate kiye jate hain. So our focus was more on the multilingual aspect of literature, and that is something that we showcase throughout, you know, the university. Aur uske through hum kafi events bhi karwate hain, book launches and, you know, discussions that could help students, those who want to study Punjabi literature, Urdu literature, Persian literature, any literature of that sort that they like. Iske saath saath, particularly for poetry, because I think poetry is a dying form in current world, and it's very sad, but it is like that. So in order to keep you know, this cozy atmosphere for the students who have this yearning for rhymes, we have this Rhymester Society, and Nayaba, you're also associated with that society. So I think it's a brilliant project for the writers, those who want to write in verse. So, abhi recently we had a collaboration with the Japanese embassy.
1: Yeah,
3: where we, you know, published an anthology of haiku, and I think that was a very creative project, led by Nayab and Sarosh. So that was brilliant. Also, you know, we have literary festivals organized. You know, every year we have these literary carnivals where we, you know, invite writers from, you know, different universities and, you know, different forums where, you know, they can come and collaborate with us. So the creative side of students have to be explored in terms of the fact that they are obviously a part of their, you know, literary faculty. But those who, you know, want to get into the publishing industry, that is also very important, because hum sirf ye nahi chahte ki students ka expression literature ko leke behtar ho, hum ye chahte hain ki wo kuch create bhi kare. So we create this liaison with the publishing industry as well, where students are publishing. We have so many students who have already published their books and it's in the market available. And then we also link it with the business of publishing as well, so it can be lucrative as well for our students, so they can, you know, cash their creativity. It's not just about writing books and then not getting anything at the end of the day. So that aspect I think is very significant in our department, that we do showcase a variety of creative activities.
1: Wonderful. Every now and
4: then. मैं बस इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि आपने ये जो कैश करने की बात की, तो कैश करने का एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी तो हो सकता है ना, नॉट एग्जैक्टली यूटिलिटेरियन इन टर्म्स ऑफ मनी. तो वो यूं भी तो हो सकता है कि जो रेलेवेंस है लिटरेचर का, क्या उसकी अहमियत लाइफ के लिए है या नहीं है.
1: एग्जैक्टली,
5: बिल्कुल.
4: एंड आई बिलीव कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट.
2: यस.
4: हाउ? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोविड आया, और सारी दुनिया उसकी लपेट में आ गई। अब कोविड को आपने वैक्सीन आ गई, उससे तो रिकवरी हुई है, लेकिन वो जो लॉसेस हैं, वो जो मैसिव लॉसेस हुई है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है और उसके साथ जो ट्रॉमा रिलेटेड है, उसके लिए आप क्या करेंगे? Exactly. आपके पास क्या कोई रेमेडी है? वो रेमेडी आपको कहीं म्यूजिक में आएगी, कहीं डांस में आएगी, ये जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसके अंदर आएगी, और पोइट्री में आएगी। यानी अदरवाइज तो लाइफ एक बिल्कुल एक टीडियस तो इज एनी वे है, लेकिन उसके अंदर एक जो बोरियत और बेजारी का जो आंसर है, एलियनेशन का जो आंसर है, उसको काउंटर करने के लिए यू नीड गुड लिटरेचर। आपके रिचुअल्स हैं, आप शादी ब्याह हैं, आपकी जो फ्यूनरल्स हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल, उन्होंने जो शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश किया, और नज्म का उन्मान ही शेक्सपियर है, तो आप जरा ये देखें कि वो कैसे ट्रिब्यूट, एक बड़ा आदमी एक बड़े आदमी को कैसे ट्रिब्यूट पेश करता है। थोड़ी सी मुश्किल है, माजरत है, लेकिन तुझको जब दीदाए दीदार तलब ने ढूंढा, ये शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं, ताबे खुर्शीद में खुर्शीद को पिन्हा देखा, When the eye wished to see you and looked, it saw the sun hidden in its own brilliance. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. English mein iska yun hoga ki you were hidden from the eyes of the world, but with your own eyes you saw the world exposed and bare. और आखिर में कि हिफ्ज़ इसरार का फितरत को है सौदा ऐसा, राजदां फिर न करेगी कोई पैदा ऐसा। अब बेसिकली तो लाइक ओके, एक बड़ा आदमी है, मर गया, आपने उसे दफन कर दिया, अब उसको, लेकिन पीपल विल फॉरगेट दैट बट विल नॉट फॉरगेट दिस। तो इसके अंदर जो एक इटर्निटी का, और वो इटर्निटी है जो हमें नेचर के साथ फिर लिंक करती है।
1: Behtareen. So that's a great news for our aspiring students. Well, now here I would like to talk to my listeners ki agar aap interested hain to please do not wait, apply kare aaj hi. University of Central Punjab ki website par unka contact number hai, aap personally visit bhi kar sakte hain. I'm very inspired by the department. Aaj ke show ke liye bas itna hi, but conversation of course it doesn't end here. If you have any questions, feel free to reach out to university. Thank you to our guests for sharing the valuable insights, and thank you, dear listeners, for tuning in. Until next time, this is your host, Nayab Afzal. Stay inspired, keep learning. FM 92.6 UCP Ki Duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सवेरा फ्रॉम द रेडियो टीम। हम चाहते हैं कि टीचर्स से डायरेक्टली उनके एक्सपीरियंसेस और टीचिंग के बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें। सो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज वन क्वालिटी यू ऑलवेज ट्राई टू डिवेलप इन योर स्टूडेंट्स बिसाइड एकेडमिक्स?
1: अस्सलामु अलैकुम, दिस इज यक्षी सलीम, प्रिंसिपल लेक्चरर एट फैकल्टी ऑफ मीडिया UCP. Well, I always try

है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही हूँ। मैं सलाम पेश करना चाहूंगी उन तमाम असातिज़ा को जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें और अच्छे इंसान बने।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Assalamu alaikum, sir. I'm Savera from the radio team. I want to ask a question. What does being a teacher mean to you personally?
1: Assalamu alaikum. Mera naam Dr. Atif Ashraf hai. Main HOD hoon, Faculty of Media and Mass Communication in University of Central Punjab, Lahore. Teacher ya teaching ek passion hai aur ye wo passion hai jo sirf bachchon ki grooming hi nahi karta, unko ilm ki रोशनी से रोशनास नहीं करवाता बल्कि उनकी तरबियत भी करता है, उनका हिडन पोटेंशियल सामने लेके आता है और उनको अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से वो तमाम बातें, वो तमाम तजुर्बात शेयर करता है जिनकी उनको मुस्तकबिल में ज़रूरत हो सकती है। तो जो टीचर है, मेरे नज़दीक टीचर एक कौम का जो एक मुस्तकबिल है वो क्रिएट करता है, एक पूरी नस्ल की तरबियत के लिए जो टीचर अपना, जिसे वो कहते हैं कि खून पसीना एक करता है, अपनी एनर्जीज़ को, अपने इल्म को, अपनी तवानाइयों को उन बच्चों के लिए सर्व करता है। और ये टीचर ही हैं जो हीरे तराशते हैं, जो अपनी क्लास के अंदर से उन बच्चों को जो खामोश बैठते हैं उनके टैलेंट को हंट करते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, उनको दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आएँ और अपना टैलेंट, अपनी काबिलियत का इजहार करें। बिकॉज टीचर का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना नॉलेज इम्पार्ट कर दे बच्चों के अंदर, बल्कि जो एक टीचर है वो बच्चों को सोचना सिखाता है, उनको सीखना सिखाता है और उनको एक तलब, एक प्यास देता है इल्म की, जिससे बच्चे खुद एक इल्म को हासिल करने की जस्तजू करते हैं। और यही बच्चे जब आप उनमें एक स्पार्क क्रिएट कर देते हैं लर्निंग का, कुछ सीखने का, यही बच्चे बड़े हो के शमा से शमा जलाते हैं और इल्म का जो शमे है उससे फिर पूरा मुआशरा रोशन होता है।
2: Thank you, teachers, we love you.
3: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सवेरा फ्रॉम द रेडियो टीम। हम चाहते हैं कि टीचर्स से डायरेक्टली उनके एक्सपीरियंसेस और टीचिंग के बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें। सो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज वन क्वालिटी यू ऑलवेज ट्राई टू डिवेलप इन योर स्टूडेंट्स बिसाइड एकेडमिक्स?
1: अस्सलामु अलैकुम, दिस इज यक्षी सलीम, प्रिंसिपल लेक्चरर एट फैकल्टी ऑफ मीडिया यूसीपी। वेल, आई ऑलवेज ट्राई फॉर देम टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा अच्छे इंसान बने, दूसरों को अच्छाई सिखाएं और एक बेहतर पाकिस्तानी शहरी बने।
0: वुड यू लाइक टू शेयर अ मैसेज ऑन दिस स्पेशल ओकेजन?
1: वेल, इस टीचर्स डे के मौके पर मैं अपने तमाम जो असातिज़ा हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना सिखाया। और अब बतौर उस्ताद मैं खुशनसीब हूँ कि ये लेगेसी जो है ये मैं आगे लेके चल रही हूँ और वही टीचिंग्स जो हैं वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही हूँ। सो मैं सलाम पेश करना चाहूँगी उन तमाम असातिज़ा को जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें और अच्छे इंसान बनें।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: डरे नहीं और चीख के कहे,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस, देन

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6